0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
1: नैनों में

0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: अरे तक जरा तक,
1: जल्दी से बक, कहता है क्या वो दीवाने।
0: छोरी छोरी छोरी आ,
1: अरे जा जा जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा।

0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा।
1: होश करो तुम,
0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा। आशिकों की सुन,
1: छोड़ मेरी धुन, कैसे ही कर ले
0: गुजारा। चोरी आ आ चोरी आ,
1: जा जा जा छोरा, जा जा जा छोरा, जा जा जा छोरा, जा।

0: मैंने कहा आ,
1: मैंने कहा जा,
0: मिलकर बना आ जा। मैंने कहा आ,
1: मैंने कहा जा,
0: मिलकर बना आ जा। मैंने कहा आ,
1: मैंने कहा ना,
0: मैंने सुना आ आ आ आ चोरी आ आ आ चोरी आ आ आ चोरिया।
1: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ek baar maa Parvati Lakshmi ji ke ghar jaati hain aur wahan dekhti hain ki Lakshmi ji ke paas bahut sundar mahal hai. Unke man mein bhi aata hai ki main bhi apne Bhole Nath se kehkar unse bhi sundar mahal banwaungi. Parvati ji Bhole Nath se kehti hain ki swami mere liye bhi ek sundar sa mahal banwa do. Maine Lakshmi ji ko neecha dikhana hai. Bhole Nath samajh jaate hain. Kehte hain hum to sanyasi hain. हमारा महलों से क्या काम. लेकिन पार्वती जिद करती हैं और उनके जिद पर एक सोने का सुंदर सा महल भोले बाबा बनाते हैं. पार्वती के गृह प्रवेश पर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया जाता है. यज्ञ करवाया जाता है. उसी यज्ञ में रावण के पिता ऋषि विश्वा भी अपने पुत्र रावण को लेकर यज्ञ में आते हैं और यज्ञ पूर्ण करवाते हैं. पार्वती जी खुश होकर दक्षिणा मांगने को कहती हैं. इस पर रावण दक्षिणा में वही महल मांग लेते हैं और भोले बाबा उनको वही महल दे देते हैं. पार्वती बड़ी दुखी होती हैं. भोले बाबा के समझाने पर फिर दोनों कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं. तो भक्तों ऐसे ओघड़दानी हैं हमारे भोले बाबा.

0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
1: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी।
1: मुझे भी नहीं आती।
0: मुझे भूख नहीं लगती थी।
1: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
1: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
1: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है और इस रोग की बस एक ही दवा है।
1: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया! रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
2: क्या हुआ योयो?
0: देखो ना, क्या हो गया है अपनी रोजी को।
2: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
2: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
0: नहीं!
2: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
3: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
2: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे!
4: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको।

0: यार
1: अच्छा एक बात बताओ, ये चरस पहले आई या करप्शन?
0: चरस पहले आई।
1: कैसे?
0: सुन, चरस में नशा है, नशे में पावर है, पावर में करप्शन है। कैसी गई?
1: क्या बात है, ब्रिलियंट।

पवन के झोंके। सोनू निगम और अलका याग्निक, इन दोनों से आप गीत को सुने। फिल्म का नाम रेफ्यूजी। उजाला रेडियो पर इसी फिल्म से इन्हीं दोनों की आवाजों में एक और गीत पेश है।

मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे पास आ। अलका याग्निक एंड सोनू निगम, इन दोनों से गीत को आप सुने।

दे तू, क्योंकि सावन आया है। उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं एंड न्यू श्रेया घोषाल एंड शॉन। मुझे तुम से मोहब्बत है।

Hey, सुनो वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

आशा भोसले एंड शमशाद बेगम जी, फिल्म किस्मत से गीत आप सुने। एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मोहम्मद रफी साहब अब हिस्सा लेंगे।

सपना वो टूट गया क्या करें, लेकिन भरम वो दिल को प्यारा था। आप नाराज खुदा खैर करे,

और यूं ही रोने नहीं दूंगा, अगर तुझे हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। फिल्म एनिमल का गीत को आप सुने। उजाला रेडियो पर सुनने वालों, एक और गीत

तू हाँ तू मानू मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, गायक किंग की आवाज में। एक और गीत पेश है अब, फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से निकाला हुआ।

नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो थोड़ा इंतजार। एश किंग एंड जोनिता गांधी, इन दोनों से आप गीत को सुने। और ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा उजाला.nl।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बे प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो।

अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो.

कुदरत का करिश्मा एक दूसरे से है मिलना, दुनिया की जर्जमी पर किस्मत को है आसमाना, ये प्रेम का जहां है हर किस न भूल जाना, आपस की ये मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। हमारे प्यारे सुनने वालों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और अदा। आज इतवार 13 तारीख सितंबर का प्रोग्राम जो आप लोग सुनने को जा रहे हैं, प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबाद अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है इनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। इतवार का शाम का पैगाम जो आप लोग सुन रहे हैं वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो उजाला रेडियो का व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9 3 3 0 8 0 8 पर आप लोग हमें ऐप कर सके हैं। चलिए आज का शाम का प्रोग्राम में पहला बैठक गाना जो आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे भाव झिनकू जी के आवाज में, गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

शाबाश शाबाश। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और वो भी खास करके भाव जिनकू जी के आवास में। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो बात करेंगे में जहां पर श्रीमान राजन खुनखुन जी प्रोग्राम को बैठकर सुने। इस गाना को मांग किया है स्वर्गीय श्री पंडित अवध बिहारी जी के आवास में।

शाबाश शाबाश। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और खास करके श्री पंडित अवध बिहारी जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, बैठक गाना हंगामा वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम।

और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो कपला एंड द आइसल में यहाँ पर इस वक्त ग्लेन गंपत जी प्रोग्राम को बैठ करके सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम।

शाबाश शाबाश। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे सुनने वाले, कुछ लाइव रिकॉर्डिंग हम आप लोग को सुना रहे हैं और बैठक गाना का, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना जो आप लोग सुन रहे हैं। अब की बार चलिए गाना और प्रोग्राम

0: में। वेल शाबाश, शौर सरा से लक्ष्मण गणपत जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने।
1: जग की रीत मीत सब झूठी पर गए।
0: और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो कजाई और मेरे में और खास करके भाई माइक बुद्धू जी प्रोग्राम को बैठ करके सुन रहे हैं।

शबन शबन जौर इस तरह से खान शर के स्वर्गीय पंडित हरि शिव बालक जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने।

0: वेल शाबाश शाबाश हम तो से पूछी सोना चिरैया आओ कहा जोलिया कमाए रे
1: खोलो
0: और तुरंत हाउस में सोनीता भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने है अरे सखिया खोलो कमरिया आई बॉय यू आर उजाला रेडियो वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम

चाहे बोलो चाहे ना बोलो हमें क्या गम है। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, युवाड उजाला रेडियो का वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा यार। एंड अब की बार हार्लम में सीता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं। एंड युवाड उजाला रेडियो ए तुल पकाई भाई ले कि तुलक अचल बचल कुछ खाएगा जो

0: इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड शर्मिन तेजू के आवाज में एकदम से परमारे बहु शहर से एंड युवाड़ू जला रेडियो का प्रोग्राम है यार।
1: ध्यान लगा
0: आई बॉय हम तो सुनी लो यार। एंड चलिए यार मेरे में जहां पर माला मुंगार भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं ये गाना तुम्हारे नाम आया या अनंत भोला सिंह जी के आवाज में

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। इतवार का शाम का प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा। करीबन देखा जाए तो 9 मिनट व्यतीत हो चुकल है 4:09 सोमदाग 13 सितंबर। अबे कलिया के बाद हम कहूँ रही ली तो एक मिला में बिटाइल बोले सुभाष बोले हम तो के जाने लो आउस वेल वेल वेल बोले तू प्रोग्रामा बनाओ इस पहले तू फोर ब्राइडिंग करे हम बोली नहीं हेलो माओ नहीं मन बोले तू कहाँ से वर्दोन पावे आई बोय हमें को बुन ना फोर ब्राइडिंग करे ना कुछ जब 3 बजे मैं निकला द फोर जो जी हमारे मुड़ी में आवे वही हम बोली लो ओके वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा। एंड चलिए देखा जाए तो खासर के होफदोरम शहर में जहां पर इस वक्त आनंद मंगरू भी प्रोग्राम को सुने हैं तो ये गाना तुम्हारे नाम
1: ले ले लल्ले लाला
0: आई बॉय ले ले ले ले

शाबाश शाबाश हो देखा भाईल हमार मसनिया एन ब्रेडा शहर में गायत्री भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं। एगो मेल भी अंदर आए लगेगा, बोले सुभाष बोले मकल को हाउदन बोले तू इतना मोई मोई गाना बजावे है, बोले हमारे घर का काम वो सब बहना हो गया। वेल हम तुम लोग से बताई ली तो हमार साथ तुम लोग के हर एक काम घर के हो है। तो चलिए गाना पेश है मकल को मोई से करिए, घर मोई से सफा करिए, कोना कोना झरिए। अच्छा मछरिया

0: हमार मसीनिया वेल, हमार मसीनिया खाली लॉफ करे और हमार मसीनिया में सौ तो खबावे या वेल। द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सेवना जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने।
1: तदिरा होइगे पुरान दवाई डालो धमिया मर गई है, तदिरा होइगे पुरान
0: अम शरम सही तो उसमें बैनी राम शरण भी प्रोग्राम को बैठ के सुने। तो भैया बैनी ये गाना तुम्हारे नाम अब मोई से सौ

शाबाश शाबाश, बोले रात के सपना दिखाई पिया हमको, ऐसा से सुजल उमराव के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुनें। एगो एप अंदर आयल बोले वाओ सो खसालक सुपर लोक ऑफ यू आर उजाला रेडियो थैंक यू वेल। और दनहा शहर में उषा भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने तो देखा जाए इस बार हमार रनिया का करे। और गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो खास करके देखा जाए गाने वाले होंगे The Young Tiger of Bite Gana Vishal Hira।

शाबाश शाबाश हमारे रनिया, बता दे सच बतिया, बोले तोर मोटी मोटी गरम गरम गलवा लकर यवल यवल विशाल हीरा के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। यू आर उजाला रेडियो है वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम, बैठ गाना हंगामा, सगरो हंगामा, घर में हंगामा, बाहिरे हंगामा, यबो अब तोर घर के कमुआ हो गए हैं।

शाबाश शाबाश। और इस तरह से कृषम चेदी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। वाल सुरिनाम से वो एप अंदर आए है का भाई ग्लेन तेवारी बोले बाहर बा द्रियन दर्द खराद एन उजाला है भीतर होंद वाल सब हिलावे हुआ आई बोले यू आर द बेस्ट।

अरे रूपा के देख, रूपा ही लाव कर यहाँ एन लूपा, रूपा रूपा रूपा लिपस्टिक लगावे एन बोले चाहे जोंच लगा वेल रूपा खवेलदख एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। हमारे प्यारे सुनने वालों देखा जाए तो बैना बैना बैना दो और पंद्रह बोले बोले बोले भाई जी बोले खाई नो फेदर फोकने युरवा ना यार आई बोई कस के सिवयो। और ये गाना पेश आप सभी सुनने वालों के लिए जो हमारे साथ दिए हैं बस इन इसका प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा दोन दोन हो गए

और आने वाले सप्ताह में फिर हम आप लोग से मिलेंगे, चाहे जहां पर आप लोग बांटे मोइश रहियो, हमारा साथ देने के लिए हमारा प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।

तुम मिले तो दिल खिले, तुम मिले दिल खिले, मुझे जीने को और क्या चाहिए। फिल्म क्रिमिनल का गीत और गीत के गाने वाले कुमार सानू एंड अलका जी, उजाला रेडियो पर।

मैंने सोचा ना था एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे और राहों में फूल खिल जाएंगे। मैंने सोचा ना था। यस बॉस फिल्म का नाम कुमार सानू एंड अलका जी, इन दोनों से आप सुने।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

पूरा तौर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा।

तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है. बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

गेसों की शिकन है अभी शबनमी। शिकन जो करवटें सलवटें वो पड़ जाती हैं, जैसे कि ये सलवटें अब पड़ गई हैं, गेसों में जो सलवटें पड़ी हैं अभी भी शबनम की तरह है, चमक रही है। रात में शबनम चमकती है।

हुस्न और इश्क की आज मेराज है. द हाइट ऑफ ब्यूटी एंड द हाइट ऑफ इश्क, मोहब्बत, लव.

होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। फिल्म प्रेम गीत से आप सुने जगजीत सिंह की आवाज में, और उजाला रेडियो है ये। गीत और गजल की दुनिया को का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, और हम आपको ये राय पहले भी दे चुके हैं कि और मज़ा आप लेना चाहें इस प्रोग्राम से तो ऐसा कीजिए, घर के चिराग जो है तो कम कीजिए, रेडियो की आवाज़ जोर कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, फिर देखिए मज़ा क्या है इस प्रोग्राम के साथ।

और शाम गजल आप अभी सुने मुकेश जी की आवाज़ में, उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम है गीत और गजल की दुनिया।

अब तकरीबन 10 मिनट के बाद इस प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे गीत और गज़ल की दुनिया। लेकिन आपको याद रहे कि प्रोग्राम फिर आने वाले हफ्ता आप सुन सकेंगे और हम यहीं पर आपका इंतज़ार करेंगे, आप भी ज़रूर आना सुनने के लिए।

और गीत और गजल की दुनिया के सुनने वालों, उजाला रेडियो पर वही प्रोग्राम जारी है। इस गजल के साथ नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में

सनो एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। या नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में आप सुने। एन एक मुत तुखीफ, ये मुत वेल फन द स्टाइल होल्डन फन नुसरत, अंदर्स नहीं अंदर्स फिंच इट खवोन नीत मोई। मार अगला जो हम आपको, अगली गजल जो आपको हम अब सुनाने को जा रहे हैं मेहदी हसन की आवाज में, तो ये गजल जो है, अगर जो बीते गजल आपको नहीं पसंद आए हुए होंगे तो ये गजल जो है तो जरूर पसंद आएगी आपको, सुन लेना।

रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता मेहंदी हसन से आप सुने। उजाला रेडियो, गीत और गजल की दुनिया आपकी खातिर।

तुम चले जाओगे तो सोचेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह, हाँ, इन दोनों से आप गीत को सुने। और अब अगली गजल जो है अशोक खोसला की आवाज में पेश है। एक बार फिर शुरू करता हूँ। हाँ, पेश है घटा।

तुम इतनी जवां हो, तुम्हें प्यार करने के जी चाहता है। अशोक खोसला की आवाज में गीत को आप अभी सुने। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, और पेश है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया।

गिरा सकोगे मुझे तुम, नज़र से गिरा रहे हैं। आप इस गीत को, गज़ल को सुने मेहंदी हसन की आवाज़ में, और हम आपको एक राय दिए थे, याद है? अगर इस प्रोग्राम से और ज़्यादा लुफ्त आप उठाना चाहें तो घर के चिराग जो है कम कर दीजिए, रेडियो की आवाज़ और ज़ोर कीजिए, आंखें बंद करके फिर सुनिए।

जवां दिल के धड़कनों को गिन के बता कि दिल में प्यार है कि नहीं। आप सुने जगजीत सिंह से, हाँ जगजीत सिंह से, झुकी झुकी सी नजर है। अच्छा लगता है। अगर ऐसा हो तो आप एक ईमेल भेज सकते हो info@ujala.nl हमारे पास। अगर ना अच्छा लगता हो तो भी, हाँ तो भी ईमेल आप भेज सकते हो।

अब एक तू ही धनवान है गोरी और बाकी सब कंगाल। पंकज उदास की आवाज में आप गजल को सुने उजाला रेडियो पर, गीत और गजल की दुनिया हमारे साथ आपकी खातिर।

कागज की कश्ती और वो बारिश का पानी। जगजीत सिंह, हाँ जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने। और इस गीत और गजल के प्रोग्राम में अब हिस्सा लेंगे गुलाम अली साहब।

का इस हिस्सा में आखिरी गजल को आप सुन रहे हैं। बहुत जल्दी हम फिर आपसे मिलेंगे ऐसा ही प्रोग्राम को लेकर के। हमारा इंतजार कर लेना जरूर।

पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है, ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले

झूठा गुलफाम है, सच्चा बदनाम है, झूठा गुलफाम है, सच्चा बदनाम है। बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले का हर

को बोले बटाटा, यहाँ नमस्ते को कहते हैं टाटा, यहाँ अमरूद पेरू और अंडा है पैदा, यहाँ पर हुए हैं नए नाम पैदा, ये जिसको बुलाएं करें